हे सुनो वालों, मैं हूं आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज है कि ये भजन रूपी संदेश एवं मेरे विचारों को आप बार बार बार बार अपने जीवन में उतार कर प्रभु की भक्ति में लीन रहे और मेरे दुनिया से जाने के बाद भी ये भजन रूपी संदेश आप सभी से जुड़ा रहे। मैं आप सभी से ऐसी कामना रखता हूँ। इस भजन रूपी संदेश को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, बिल्कुल ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मैं आपका अपना ही गोपाल परदेसी बाबा।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मुकेश एंड शारदा से आप सुने फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का गीत, और इसी गीत के साथ उजाला रेडियो का प्रोग्राम का इस हिस्सा में आपको स्वागत करता हूं। कुछ पुराने गीतों के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं।

अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, ये वादा है कि आधी रात हो जाने पर हम जाने देंगे तुम्हें। लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म नागिन का गीत, और अगला गीत भी लता जी की आवाज में होंगे।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा
1: आ, आजा रे आ जरा
0: जरा आ।
1: आज के अब तक आज के सभी गीतों में आने की बात और फिर ना जाने की बात, मोहम्मद रफ़ी साहब से आप सुने फिल्म लव इन टोक्यो का गीत, और ऐसे फिर आने की बात और ना जाने की बात अगला गीत में भी है।

नहीं ना ना ना, थोड़ी देर और रुक जा, फिर हम जाने देंगे। शारदा की आवाज अराउंड द वर्ल्ड से आप सुनेंगे। फिर वही बात, सैया छोड़ दे बैया, फिर आने की बात और ना जाने की बात।

दिनों तो ऐसा होता था ना, जो कोई किसी का हाथ पकड़ लेता था तो नहीं छोड़ता था, और आज इन दिनों के बात है, इन दिनों तो हाथ कोई पकड़ता नहीं तो छोड़ने की बात भी पैदा नहीं होती है ना। तो या

0: गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया।
1: आँखों में
0: गीता दत्त एंड मोहम्मद रफी साहब से आप सुने फिल्म CID का गीत और ये उजाला रेडियो है। आज एक बार फिर कुछ पुराने गीतों के साथ

जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आशा जी के साथ मोहम्मद रफी साहब, फिल्म घराना का गीत आप सुने। एंड न्यू एक बार फिर लता जी।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

सुनो मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

अला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। युवा रूजल रेडियो है

वाल चाहे जहाँ पर आप लोग हमारा प्रोग्राम को सुनते होंगे वहाँ तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से दुलार से दिलो जान से स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम यार।

Ujala Radio का दफ्तर का फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं। आज का प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से दुलार से दिलोजान से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम यार।

नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी तुझे, इतना ना चाहो मुझे। हमारे प्यारे सुनो लो, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और आशा है कि आप लोग को भी पसंद भइल होई, पसंद आइल होई।

वल वल यार मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी के आवाज में, चलिए की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुनलो एक और ऐसा ही गीत प्रोग्राम में जो हम आपको सुनाने वाले हैं। युवा उजाला रेडियो है

बल यार कितना मोई कितना भी साल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, ऐसे ऐसे कभी हो जाए कि मैं तेरी सुन जरा

बोल बल यार वो लम्हे और वो बातें। और इस तरह से आतिफ असलम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यार सुनल हो। और देखा जय अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं।

0: यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और चलिए गाना की तरफ हम आप सभी को ले चलते हैं।
1: सब ठीक ठाक, चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे
0: कल गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यार। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके

केसरिया तेरी, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, हमारे प्यारे सुनने वालों, यही आशा है कि जितने गाने हम आप लोग को सुनाते हैं आप लोग को भी पसंद भी आते होंगे।

वेल यार तुझको जो पाया तो जीना भी आया, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो है।

वेल यार, इतना मोई कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने मोहन छोटी जी के आवाज में। चलिए की बात तो श्रिया जी के प्रोग्राम में हम ला रहे हैं और इन्हीं के आवाज में गाना जो आप लोग सुनेंगे।

कितना भी साल मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से और चलिए की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं हमारे प्यारे

वेल यार ओ हम सफर, ये प्यार का वादा है, तू हंस ले, तू हंस के मांग ले मेरा प्यार। से नीहा एंड आतिफ असलम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। चलिए की बार हमारे प्यार सुनवलो प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अरमान मालिक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से समस्त परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ेफ़न तख़यार औत श्रीमती निर्मला कल्लू का पति लड़कन सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता और लड़कन के नाना अम्स्टरडम न्यूस्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु अम्स्टरडम के ओंज लीफोफ्रावखास्थाउस वेस्ट में हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम इलाका कॉमवेन का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन ज़ेफ़न तख़यार औत श्रीमती निर्मला कल्लू का पति लड़कन सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता और लड़कन के नाना अम्स्टरडम न्यूस्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु हो गई है ओंज लीफोफ्रावखास्थाउस वेस्ट में। इन्हें लोग मनी के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले कॉमवेन का रहने वाला था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज रात के 7 बजे से 8 बजे तक एटवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के दिन में 4 बजे मोरखन फ्रेडाख फीरूर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्त फुरजोरखिंग परिवार कल्लू के दुख में शामिल।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

तेरा क्या होगा कालिया, अरे चुनकर उजाला रेडियो और बजा दे सबका बाजा।

सुनने वालों, यहीं तक आप सुने उजाला रेडियो का एक और प्रोग्राम, जिसके साथ आपसे हम अब इजाजत चाहेंगे।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर।
1: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
2: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
1: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

0: voorstelling.
1: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
2: You are the banger of England.
3: ये है उजाला रेडियो और अब बजने जा रहा है ये गीत आपके खातिर। उजाला रेडियो पर हम बजाते हैं तोर खातिर।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से परिवार कृष्णा कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तखियार औत छोटा भाई कृष्णा कल्लू का भाई, छोटकी मरेस्का कल्लू का बड़कू विकी कल्लू और करिश्मा कल्लू के दादा देमियान ओरी का ददवा ससुर अम्स्टरडम न्यू स्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु अम्स्टरडम के ओंस लीफ ऑफ रवास्ट हाउस में हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और सूरीनाम में पहले कमवैन का रहने वाला था। अलमेर से परिवार कृष्णा कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तखियार औत छोटा भाई श्रीमान कृष्णा कल्लू का बड़ा भाई, छोटकी श्रीमती मरिस्का कल्लू का बड़कू विकी कल्लू और करिश्मा कल्लू के दादा देमियान ओरी का ददवा ससुर अम्स्टरडम न्यू स्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु हो गई है। अम्स्टरडम में इन्हें लोग मनी के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले इलाका कमवैन का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक उत्फर्सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाहक्रिया कल शुक्रवार के दिन में 4 बजे किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार कल्लू के दुख में शामिल है।

और ये है शान की आवाज। फिल्म क्या लव स्टोरी है, गाना का नाम है मिस यू एवरी डे।

तेरे मेरे रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। Ja, is afkomstig uit de film Bar Bar Deco. Een geweldige, mooie, beautiful duet song gezongen door Jesleen Kaur Royal en Pratik Kuran. Ujala Radio Apertune, hessunwalo.

बजकर 9 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का अपना उजाला रेडियो है ये और लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से फिर एक बार मौका मिला है आपका सेवा करने का। तो अब से रात्रि में 11 बजे तक पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। स्वागत है तहे दिल से आप सभी को। रतन राम दुलारे पांडे है मेरा नाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब है। आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। एनतिस वनाख मेरे प्यारे सिनवालो, लास्ट डोंडरडग फन ऑगस्टस 27 अगस्त मेरे प्यारे सुनवालो, 27 अगस्त साल 2026। अगली बार ये प्रोग्राम जब कि हम सजाएंगे तो नए महीने में होंगे, सितंबर महीना का 3 तारीख। माया आज स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे। दादू एक नोइट मेरे प्यारे सुनवालो, एक हफ्ते होने 3 प्रोग्राम समाप्त, आज 2010 वा प्रोग्राम है और वो भी दिल की आवाज का जो प्रोग्राम हम सजा रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल की आवाज के दिन इतनी मशहूर कलाकार द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी का आज 50वां पुण्यतिथि है। 50th सर्वदाह मेरे प्यारे सुनने वालों, तो हम ऐसे नहीं हो, हम ऐसा प्रोग्राम तो सजा नहीं सकता ये जानकर कि आज का दिन 50 साल पहले और वो भी 27 अगस्त 1977 इतनी महान गायकी, इतनी मशहूर कलाकार हम सभी का चाहता मुकेश चंद माथुर और मुकेश जी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी या ननकाने कितनी फॉर बहलाता खान मेरे प्यारे सुनने वालों। मुकेश जी ने इतने सारे प्यार भरे और डर भरे नगमाएं गाए हैं। आज ये 3 घंटे का प्रोग्राम में आपको क्या हम सुना पाएंगे, उनकी जो कलेक्शन है, आज मैं सिर्फ एक छोटा सा झलक आपको सुना पाएंगे। एंड मीन्स 3 घंटे में जो भी हम निकालेंगे आपको सुनाएंगे, आप एंजॉय करें। एंड वह आलम आलों से फेवरेट नंबर ऐसे नित्य से धन माफी चाहता हूं अभी से, चॉइस बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो भी चलाएंगे आप सभी एंजॉय करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज का ये दिल की आवाज हम सजाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। तो लाइव एंड डायरेक्ट की वार के स्टूडियो रतनाम से जहां पर 13 मिनट इस वक्त हो चुके हैं, वो भी 8 बजकर, फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारी ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों। Natuurlijk mag je naar de studio appen 020-363-0808 और रहे आपके कामों काज के लिए दफ्तर के कार्रवाई, जैसे कि फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें या जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक 020-409-0807 या तो कीजिए मेल किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी पल, जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े info@ujala.nl। आज बहुत डिस्कशन हुआ है कि आज रक्षाबंधन है या कल है। मेरे प्यारे सुनो लो, आज बहुत सारे लोग मना रहे हैं रक्षाबंधन, भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता, आज का ये विशेष जो रक्षाबंधन है
आप सभी को बधाई या शुभकामना। और अगर आप कल मनाएंगे मोड़ बहने करनी थी, जैसे भी हो सोलंग दलीफ दार इस फोरलकार मागते नहीं जाए वेलकम दख ये दूत देते स्मारक कैलेंडर दातुम। लेकिन वो प्यार भाई बहन का रोजाना होना चाहिए। तो शुभ रक्षाबंधन आप सभी प्रिय सुनने वालों को हम कहते हैं। अनुक अनमैन सुस आप सभी को शुभ रक्षाबंधन। मेरे प्यारे सुनो, आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम बढ़ चलेंगे। और क्योंकि रक्षाबंधन के बाद हो रहे हैं तो चलो एक गीत जो हमेशा भी फरमाइश किया जाता था पहले, मैं आज वो नगमा से प्रोग्राम का ओपनिंग करेंगे। महान कवि सॉन्ग राइटर राजेंद्र कृष्ण जी इनकी कलम से लिखा हुआ ये पॉपुलर सॉन्ग अमर संगीत। मेरे प्यारे सुनने वालों, जो मिलकर गाएंगे संगीत की देवी लता जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश की। प्यार का बंधन खून का रिश्ता छूटे से ना छूटे। एंजॉय दिस सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय यू आर एंजॉय दिल की आवाज। शुभ रात्रि।

प्यार का बंधन खून का रिश्ता, और वो भी छूटे से ना छूटे, लगे रहे और भरे रहे, प्यार भरे ये मिले और खुशियां का झूला भी झूलेंगे भाई बहन अकेले, और वो भी अकेले नहीं अलबेले भी। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये अमर संगीत, संगीत की देवी लता जी, और आज जिनका प्रोग्राम स्पेशल दिल की आवाज में पेश करता हूं, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी गाकर सुनाए हैं 1977 का मूवी खेल खिलाड़ी का एक नगमा। मुकेश जी बहुत ही कम उम्र में सभी के दिलों को ऐसे आप पकड़ा अपने संगीत के साथ, इस तरह से हमारे दिलों में घुस गया है इनकी आवाज। जहां ये पैदा हुआ दिल्ली शहर हमारे भारत देश में, 22 तारीख जुलाई 1923 मेरे प्यारे सुनवालों, और गाते गाते इतने और उसमें इन्होंने अपना दम ही तोड़ दिया। बहुत ही कम उम्र में 53 साल, 3 फाइव तक

यार, और वो भी आज का दिन 50 साल पहले, और वो भी 1976 अमेरिका में डिट्रॉयट मिशिगन में। तो हमारी मुकेश जी, देखो ना 50 साल हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन यकीनन करोड़ों लोग आज उन्हें याद किए हैं, उनके संगीत चलाए हैं, सुने हैं। मैं भी किया, और आज ये प्रोग्राम के जरिए कोशिश करता हूं इनकी जो इतनी सारे गाने हैं, एक छोटा सा झलक। डॉट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी और लता जी ने बहुत सारे खूबसूरत गाने गाए हैं। चलो एक और नगमा, अब की बार अनजान साहब जी का लिखा हुआ गीत। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग। और ये गीत क्या कहते हैं, अनजान ने क्या लिखा है कि कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बन जाते हैं। मेरे प्यारे सिनोलो, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुकेश जी और लता जी।

जाने ये कैसा नाटा है। एक दिन मन का पागल पंछी बिन पंख लगे उड़ जाता है, और ये सूरज छूने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। बस कुछ इस तरह का बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं, लेकिन जो बिन बांधे बन जाते हैं वो कभी कभी जीवन भर तड़पाते हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अनजान महान अनजान साहब जी, समीर अनजान का पिता और बहुत सारे खूबसूरत अमर संगीत लिखने वाला, इनका लिखा हुआ गीत हार्ट ऑफ मिलियंस और संगीत की देवी लता जी की आवाजें, फरिश्ता या कातिल फिल्म का नाम। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनवालो। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप जरूर चेक करें www.pintujala.net। अब की बार मुकेश जी सुमन कल्याणपुर जी के साथ मिलकर एक पॉपुलर सॉन्ग गाएंगे, चंद्रू जी का लिखा हुआ, और मुकेश जी क्या कहते हैं इस गीत में। मुकेश जी कहते हैं कि अरे भैया तू सबसे हसीन है दिलरुबा, और दिल तेरे बिना है बेकरार, और लड़की विश्वास नहीं करता कि इनकी बात सच है या नहीं, मगर अगर मुकेश गाएंगे दन मुतत व्यवहार से। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, हियर ऑन यू आर दिल की आवाज।

हम तो तेरे दीवाने हैं और तेरे बिना बिल्कुल बेगाने हैं। और लड़की इस गीत में काफी नेगेटिव वो जवाब देता है कि हम नहीं सुनेंगे ये गाने हैं, जा किसी और को गीत सुना। और बार बार मुकेश जी गाकर सुनाते हैं, अरे भैया तू सबसे हसी है दिलरुबा, और मेरा ये दिल तेरे बिना बहुत है बेकरार। और लड़की फिर एक बार कहते हैं कि छोड़ो जी छोड़ो, ये तो बातें हैं, ये बात किसी और को सुना, कैसे मैं कर लूं तुम्हारा एतबार। लड़की का दिल जीतना बहुत मुश्किल है, ये तो पता चल गया है। हार्ट ऑफ मिलियन समाहित मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर, चंद्रू जी का लिखा हुआ गीत, रामू तो दीवाना है फिल्म का नाम। द ग्रेट इंडवर साहब जी, इन्होंने वैसे तो बहुत सारे नगमाएं लिखे हैं मुकेश जी के लिए, लेकिन जो दो नगमाएं आगे दिल की आवाज में, यकीनन आप पसंद करेंगे, यकीनन। और कंचन मिलकर गाएंगे, और कंचन की आवाज, इसने ताले चटनी आवाज, लेकिन इनकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। बहुत सारे नगमाएं इन्होंने गाए हैं मुकेश जी के साथ, रफी के साथ, और खुद गाए हैं सोलो सॉन्ग्स, शैलेंद्र सिंह जी के साथ भी गाए हैं। ये दोनों नगमाएं जो है मेरे प्यारे से नौलो, जैसे मैंने कहा, कंचन जी और मुकेश जी गाएंगे दिल की आवाज में। इंदवर ने लिखा है दोनों, और क्या नगमाएं हैं ये, खाद सहर के न पेश करता हूं अख्तर अलकार। पहले एक दर्द भरा, उसके बाद में एक प्यार भरा। ओके okay?

तारीफ करोगे कब तक, बोलो जी कब तक मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, और क्या दिल में है और तमन्ना है तमन्ना, हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। क्या खूब लगती हो, बहुत ही सुंदर लगती हो। ये पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों मुकेश जी और कंचन जी ने मिलकर गाए हैं, और उससे पहले सवाल जवाब का एक नगमा, जहां एक को प्यार है और दूसरे जवाब दिल तोड़ जवाब दे रहे हैं कि तुमने कभी किसी से प्यार किया, कभी अपने दिल किसी को दिया है, और वो कहते हैं कि प्यार कहाँ अपनी किस्मत में। या ब्यूटीफुल दो नगमाए मेरे प्यारे सुनने वालों, इंदवर साहब जी महान कवि, इनकी कलम से इतनी सारे महान नगमाए लिखा गया है, और आगे चल के लिए प्रोग्राम के दौरान इंदवर का भी नगमाए और हम पेश करेंगे। क्या नगमाए लिखते थे ये, और कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक याद उस बिन कोर्ट फोकस में सितंबर महीना में कल्याण जी आनंद जी का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं बैक टू द फ्यूचर में। तो ये सारे नगमाए जो पेश करता हूँ, कभी ना कभी किसी भी किसी वक्त और प्रोग्राम में भी फिर हम पेश करेंगे। ये था दो नगमाए फ्रॉम द मूवी धर्मात्मा, मेरे प्यारे सुनने वालों धर्मात्मा बिग ब्लॉकबस्टर मूवी। और एक नगमा, वैसे तो ये फिल्म चला नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे प्रिय श्री सुनील दत्त साहब जी मूवी में काम करते, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि उनकी मूवी फ्लॉप है, क्योंकि उनकी हर एक मूवी मुझे प्रिय है, क्योंकि सुनील दत्त साहब जी एक महान या वट मुझे सिर्फ मैं इस है ही लमाओ खुद। लेकिन ये गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूं, उन पर पिक्चराइज नहीं किया गया है, मुकेश जी और लता जी का एक पॉपुलर सॉन्ग द ग्रेट गुलशन भावना जी, जिनके हाथों से इतने सारे नगमाए लिखा गया है, जो आज आप अब तक गुनगुनाते रहते हैं। एंड अनवेज है कि हाँ, किशोर कुमार का ना ऋषि कपूर के फिल्म ना एकर फिल्म माया वे इतनी कि इतनी खूबसूरत गीत, इतनी पॉपुलर सॉन्ग गुलशन बावरा जी के हाथों से लिखा गया है। और बावरा साहब जी सीधा साधा आदमी, फिल्म्स में भी इन्होंने एक्ट किया है, और हमेशा कॉमेडियन रोल, क्लेन रोल, लेकिन उसे छोड़ हो तो शायद इनकी हॉबी आई वो मिसकिन स्टार वॉर्ड ऑल्स एक्टर, लेकिन कवि शायर और सॉन्ग राइटर में ये एकदम पास हो गया। इनका लिखा हुआ ये महान सॉन्ग अमर संगीत पेश करने जा रहा हूं, संगीत की देवी लता जी और किश, मैं देखता हूं ने किशोर कुमार से इतनी दिन इंडी से फेरसी, दैट इज एकम फेरसी फन मुकेश लता, क्योंकि फिल्म में मैं देख रहा हूं यहां एक फेरसी भी है, बट अनरिलीज है, फिल्म में नहीं आया है। तो मुकेश जी लता जी के अलावा किशोर कुमार ने भी कुछ लाइनें गाए हैं, लेकिन जो मशहूर हुआ है वो ही मैं पेश करने जा रहा हूं, जो सिर्फ लता जी और मुकेश जी ने गाए हैं। ये नगमा तमाम लवर्स के लिए जो इस वक्त उजाला रेडियो सुन रहे हैं। कीप ऑन गोइंग द ब्यूटिफुल लव जो आप के पास है, कुछ तरह एंड फैक्टर फोर, सभी के नसीब में प्यार नसीब नहीं होता है, इस जीवन में मिला है प्यार
तो भरपूर इंजॉय करें।

0: एक है हम और एक रहेंगे, सुख में भी दुख में भी, जब तक सांसों हैं। और ये बंधन जो है हमारे टूटे ना कभी, और जन्म जन्म ये रस्में निभाने की हम कस्में खाना याद जरूर रखेंगे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, याद रहेगा प्यार का ये रंगीन जमाना, याद रहेगा पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग, एक एक खूबसूरत प्यार भरे अल्फाज, प्यार भरे शब्द गुलशन भावना जी के कलम से लिखा गया है। द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज और लता जी ने मिलकर जो गाए हैं। इस घंटे का आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुन वालों, उसके बाद ब्रेक होंगे और वो भी 9 बजे का। तो गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुन वालों, इंदवर का लिखा हुआ एक नगमा है कि दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, और फूलों को भी देखा तूने जब जब आई बाहर, और मुझको देखो ना इतना बदनसीब हूं मैं कि मुझे नहीं देखा एक बार।
1: देखा
0: द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी फ्रॉम द मूवी उपासना।
1: जब

कुछ पाकर खोना है और कुछ खोकर पाना है, जीवन का यही मतलब है। कुछ आना है और जाना है। तू धार है नदिया की और मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है और मैं तेरा सहारा हूं। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, ये बादल कुछ पल का है और छाकर फिर चले जाना है, लेकिन परछाइयां रह जाती और रह जाती भी है निशानियां। बस यही तो जिंदगी है और कुछ भी नहीं, तेरी और मेरी कहानी है। पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालों, द ग्रेट संतोष आनंद जी, कमाल के नगमाए इन्होंने लिखा है और खास करके मिस्टर भारत मनोज कुमार जी के मूवीज के लिए संतोष आनंद जी। इनकी नगमाएं सीधे दिल को छू जाते हैं, लाजवाब बेमिसाल नगमाएं इन्होंने लिखा है। और ये नगमा प्यार भरे, दर्द भरे, फिलोसॉफिकल सॉन्ग है, मोटिवेशनल सॉन्ग है, क्या पता। जो भी है, मुकेश जी और संगीत की देवी लता जी ने मिलकर गाए हैं, अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी श्योर। और ये गीत इतनी पॉपुलर है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये है मेरे प्यारे सुनवालो दिल की आवाज। आज मुकेश जी का पांचवा या पचासवा पुण्यतिथि है और उनकी याद में आज दिल की आवाज पूरा का पूरा मुकेश जी के नाम करते हैं। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे से नौ लॉचिस क्वाटोवर नहीं है।

कुछ ऊपर नहीं है मेरे प्यारे से नौलो यानी कि 9:15 का वक्त है और ले चलते हैं एक दर्द भरे गीत की ओर, क्योंकि मुकेश जी की मुखाने ना सिर्फ प्यार भरे लेकिन बहुत सारे दर्द भरे नगमाएं भी लिखा गया है। एंड वह हंग न्यू बीच इन द 70s, धीरे धीरे हम कोशिश यही करेंगे कि हम चला जाएं उनके पुराने गीतों की ओर, या कामयाब होंगे तो पेश करूंगा, कामयाब नहीं होंगे तो मुझे माफ कर देना। द सेंसुअल न्यूमर्स और जो लाए भी मैं पता नहीं आपको क्या सुनाऊं, सभी बहुत खूबसूरत है। फिलहाल तो फिल्म मिलाप का ये नगमा नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ दर्द भरा ये नगमा द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी।

नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों। राहों में कहीं नजर आया अपने ही ख्यालों का साया, और कुछ देर मेरा मन लहराया, फिर धूप गई आशा की किरण कि आजा आजा रे कि अधूरा है अपना ये मिलन। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम मिला। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, द महान द ग्रेट द ग्रेटेस्ट नाउ ग्रेट बहुत है एंड सीकर टॉप थ्री में जरूर इनका नाम लिया जाएगा, आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ एक नगमा, एक डर भरा गीत, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी, जिस तरह से वो अपना डर भरी आवाज में गीत गाते हैं उस तरह का ये एक नगमा है, एक नगमा जिसकी हर एक अल्फाज आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, इतने दर्द के साथ उनकी दर्द भरी आवाज में गाकर सुनाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पेश करता हूं वो नगमा, मुकेश जी, ये नगमा।

खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज भरे और मेरा नसीब भी मेरे कदम लेकर जहां भी पड़े ये बदनसीबी मेरी भी वहां चली आई और उदास रात है वीरान दिल की ये महफिल है ना हम सफर है ना कोई मंजिल है तो ये जिंदगी मुझे लेकर कहां चली आई कुछ पता नहीं लेकिन जुबान पे दर्द भरी दास्ता देखो चली आई। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुन वालों, द हार्ट ऑफ मिलियंस, माइटी मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम मर्यादा। मेरे प्यारे सुनो लो, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतन राम से। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे और घर की तरफ मैं देखूं तो 4 मिनट बाकी हैं सरे 10 बजने में, नहीं सरे 9 बजने में। हाँ जी, एक बार फिल्स स्नेल। मैं देखता हूं गीत मेरे प्यारे सुन वालों, एक नगमा जो इतनी पॉपुलर है मुकेश जी ने ये गीत को गाए हैं, वेदपाल वर्मा जी ने जो लिखा कि ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब तो ये साथ ना छूटेगा चाहे ये जग बैरी हो जाए। हीरो ऑन यू आर फ्रॉम द मूवी द राइट एंड रॉन्ग, माइटी मुकेश जी।

जीवन के अंधियारों में मैं दीपक और तू ज्योति और युग युग से है ये संग हमारा और जब तक सांस संसार रहेगा मेरा ये तुझसे प्यार रहेगा और हर जन्म में मुझको तेरा इंतजार ही रहेगा ओ मेरे हमराही। प्यार भरे खूबसूरत शब्द मेरे प्यारे सुनने वालों, वेदपाल वर्मा जी का लिखा हुआ, द हार्ट ऑफ मिलियंस समाहित मुकेश जी की आवाज और फिल्म का नाम द राइट एंड द रॉन्ग। आज मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि है मेरे प्यारे सुनने वालों, फलाह फैफ यार कि मुकेश जी अपना दम तोड़ दिया स्टेज पर अमेरिका में टेनेंस ऑफ थ्रीड दिल का दौड़ा और ये महान कलाकार इस अर्थ लीफ फनोन्स वेखरुक। इतना महान कलाकार और वो भी कम उम्र में सिर्फ 53 साल द्री एम फाइव तक यार फ्रांस में मोटर वास मार द्री एम फाइव तक यार दट इज टॉक फॉर स्क्रिकलक। मुकेश जी के फिर भी बहुत सारे गाने हैं, उनकी याद हम हमेशा किए करते हैं क्योंकि जब तक ये रेडियो रहेंगे, जब तक हम रहेंगे, मुकेश जी को तो फिर भी हम भुला नहीं पाएंगे और जिस दिन हम भुला देंगे तो वही दिन समझ लो मुकेश जी का एंड उसका मृत्यु हो गया। लेकिन हम वो दिन कभी नहीं आने देंगे जब तक हम प्रोग्राम बनाएंगे, उनके गाने जरूर से जरूर हम चलाएंगे।

मैंने कहा ना कि आनंद बख्शी जी एक महान कवि है और इनके हाथों से लिखा हुआ कई नगमाएं अमर है। उनका लिखा हुआ एक गीत मुकेश जी जो गाकर सुनाएंगे कि वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, ये तो था अपनी किस्मत जो कुछ ऐसे ही थी कि हमारे ये दिल टूट गया। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायते मुकेश जी।

वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि ये दिल टूट गया। और अगर ये ना होता तो कोई दूसरा गम भी होना था, लेकिन मैं तो वो हूं जिसे हर हाल में बस रोना था। और कभी मुस्कुराया भी अगर तो झलक जाती ये नजर। क्या करूं, अपनी ही किस्मत है कि कुछ ऐसी ही थी कि ये दिल टूट गया। आनंद बख्शी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत इन्होंने लिखा, डर भरा। और मुकेश जी, ये तो माहिर है डर भरे नगमाए गाने का, हालांकि ये प्यार भरे नगमाए भी उसी प्यार के साथ गाते हैं। तो लेजेंडरी हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम माय लव। अब देखो ना, इतनी दर्द भरे नगमा हमने आप तक पेश किया है और मुकेश जी अब कितनी प्यार से एक प्यार भरा नगमा मिलकर गाएंगे नाइनटिंगेल आशा जी के साथ। बिहारी साहब जी का लिखा हुआ नगमा है ये, फ्रॉम द बिल्कुल फ्लॉप मूवी पुरस्कार। लेकिन तमाम नगमाए ये मूवी का मेरे प्यारे सुनने वालों लाजवाब बेमिसाल है। तो ये गीत यकीनन आप तक हम पेश करना चाहेंगे, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी और नाइटिंगेल आशा जी।

नतीजा हमारी मोहब्बत का क्या है। प्यार आंखों से शुरू होती है मेरे प्यारे जिनवालों, तो फिर जाकर दिल में उतर जाती है। उसका नतीजा क्या हो सकता है ये तुम भी ना सोचो, और खास करके जबकि प्यार नया है, और ये हम भी ना सोचें। बहुत मेरे दिल की करीब आ गई हो, अपन नशा बन के आंखों पर मेरी छा गई हो, मगर ऐसा लगता है कि ये जन्नत है। पता नहीं है ये जिंदगी है, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि ये जन्नत है। तो तुम्हारी वफा या मेरी वफा है ये तुम भी ना सोचो, हम भी ना सोचें। मेरे प्यारे सुनो, बहुत ही खूबसूरत गीत, इतनी रोमांटिक सॉन्ग, बिहारी साहब जी का लिखा हुआ, इतनी पॉपुलर, और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी नाइनटिंगेल आशा जी के साथ ये खूबसूरत गीत मिलकर गाए हैं। रिमेंबर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनो, लाइफ एंड आर एक्यू आर के स्टूडियो रोटरडम से पेश हो रहे हैं दिल की आवाज। आज मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि है, और फनाग प्रसिस फेफ लीड, और इतने सारे गाने इन्होंने गाए हैं, प्यार भरे दर्द भरे, लेकिन क्या करूं, वक्त मुझे दिया गया है प्रोग्राम सजाने का 3 घंटे, और 3 घंटे में क्या सुना पाऊंगा। बस एक से तफेक्त हियर मेड प्लेलिस्ट और निकाल रहा हूँ नगमाएं, आप तक पेश कर रहा हूँ। अब देखो ना, द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ एक नगमा है, जो मैंने देखा तो यकीनन मुझे, यकीनन मैं जानता हूं कि आप ये गीत को पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी प्यार भरे हैं, और आप जानते हैं कि मैं कितना प्यार आप सभी से करता हूं। आपके प्यार वही है मेरा तागत। और मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी का ये नगमा, मजरू जी का लिखा हुआ, मजरू सुल्तानपुरी जी, मैं पेश करने जा रहा हूं हीर अनिवार्य, कि मेरा प्यार भी तू है ये बाहर भी तू है।

तू ही तो मेरी नील गगन है, प्यार से रोशन आंख उठाए, और मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार वही है। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरी सर को झुकाए, और मुझ पे लते बिखराए। गुलशन गुलशन प्यार है मेरा, महके है आंचल तेरा। मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, काफी पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग। सुमन कल्याणपुर जी और जिसका प्रोग्राम आज स्पेशल हम सजा रहे हैं, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायते मुकेश जी, इनकी आवाज। मैं देख रहा हूं कि घड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वक्त बहुत ही कम है, एक आखिरी पॉपुलर सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं, इंदौर का लिखा हुआ। मुकेश जी और लता जी मिलकर गीत गाएंगे कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये तो फूल नहीं लेकिन फिर भी मेरा दिल है। हीरो निवार दिल की आवाज में मेरे प्यारे सुन वालों, इंजॉय और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। एंड नखाओ नदी यार से सख्त

तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों। तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट राव, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, आई है यूं प्यार पे जवानियां अड़मा, दिल में है दिल मुश्किल में है ये मेरा जाने तमन्ना। और सोचो कभी मोहब्बत में हाथ से दामन छूते तो ये दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। मस्त निगाहों से इस दिल को मस्त बनाए जा और पिलाए जा प्यार का सागर। बहुत ही प्यार भरे अल्फाजे मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत शब्द जो है द ग्रेट आनंद बख्शी जी के कलम से लिखा गया। संगीत की देवी लता जी और द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी, मुकेश जी का आज प्रोग्राम हम सजा रहे हैं और उनके प्यार भरे और डर भरे नगमाएं पेश कर रहा हूं। ये था नगमा फ्रॉम द मूवी कर्स, सॉरी नीट कर्स फर्स। एक शिकवा शिकायत सॉन्ग, डर भरे गीत, द ग्रेट गुलशन भावना जी का लिखा हुआ, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज में पेश करने जा रहा हूं। ये गीत भी इतनी पॉपुलर है जितनी कि मुकेश जी भी है। चांदी की दीवार ना तोड़ी, लेकिन मेरा ये प्यार भरा दिल तोड़ दिया। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड इट इज 15 मिनट ओवर द क्लॉक फन 3।

कल तक जिसने कसमें खाई दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। चांदी की दीवार न तोड़ी लेकिन मेरा ये प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का ये दामन छोड़ दिया। गुलशन बावड़ा जी का लिखा हुआ नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, मुकेश जी की दर्द भरी आवाज में पेश हमने किया है। ये था फिल्म विश्वास का एक नगमा। विश्वास का ये पॉपुलर दर्द भरे नगमा आप तक हमने पेश किया है। अब की बार गीत जो हम पेश करेंगे, आज हमारे प्रोग्राम में इनका लिखा हुआ गीत पेश नहीं किया है। एंड इट इज नतुलक वेल नोड हसरत जयपुरी जी, जो एक महान कवि है। इनकी बहुत सारे नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों लाजवाब बेमिसाल है, अमर है। इनकी हाथों से लिखा हुआ ये प्यार भरा नगमा द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी गाकर सुनाएंगे कि ऐ सनम जिसने तुझे ये चांद सी सूरत दी है, वही मालिक ने मुझे तो भी मोहब्बत दी है। क्या बात है।

मैं गुजरता ही रहा तेरी हसी राहों में, और एक तेरा नाम ने क्या क्या मुझ पे हिम्मत दी है। ऐ सनम, जिसने तुझे ये चांद सी सूरत दी है, उसी ही मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। क्या बात है, कमाल का एक नगमा, रोमांटिक सॉन्ग, हसरत जयपुरी जी के कलम से लिखा हुआ, एक एक शब्द प्यार भरा। द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी ने गाकर सुनाए हैं, और फिल्म का नाम दीवाना। मींस मैं सोच रहा हूं कि एक गीत के बाद, और वो भी ये नगमा जो दुल्हा दुल्हन से हम निकालेंगे। ब्यूटीफुल मूवी मेरे प्यारे सुनने वालों, व्हाट अ मूवी फिल्म इज दुल्हा दुल्हन। और ये फिल्म का ना सिर्फ स्टोरी, ये फिल्म खूबसूरत है, लेकिन गाने भी लाजवाब बेमिसाल है। मैं एक डर भरा गीत इंदवर का लिखा हुआ निकाल रहा हूं ये मूवी से, और आप तक पेश कर रहा हूं। एंड खाऊ बेचे रहा यार, फिर तक एंड फाइव तक ये ना।

हमको खबर भी होने नहीं थी किस मोड़ पर आलाके तूने मेरा ये दिल तोड़ा, अपना बनाना रहा दूर तूने ऐसा ही तोड़ा कि औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा, तो तेरी जफा का चर्चा ही कैसा, अपनी वफा पे मैं शर्मा रहा हूं। जो प्यार मैंने तुझको दिया था वो प्यार मैं लौटा रहा हूं। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मैं मुकेश जी, द ग्रेट इंदौर जी का लिखा हुआ ये दर्द भरा नगमा फ्रॉम द मूवी, द ग्रेट मूवी दुल्हा दुल्हन से जो हमने निकाले हैं। शकील बड़ा यूनी जी इनका लिखा हुआ अभी तक गीत हमने चलाए नहीं, पेश करने जा रहा हूं इनका एक मशहूर नगमा, एक रोमांटिक सॉन्ग। शमशाद बेगम जी अब की बार मुकेश जी का साथ देंगे हियर ऑन यू आर, दिल की आवाज में मैं भौंरा तू है फूल, ये दिन मत भूल कि ये जवानी लौट के ना आ।

मैं भौरा तू है फूल और ये दिन मत भूल कि ये जवानी जो है लौट के ना आएगा। मेरे प्यारे सुन वालो, शमशाद बेगम जी और मुकेश जी का ये नगमा अख्तन सीफ तक यार आउट है और अभी तक देखो ये गीत हम चला रहे हैं रेडियो स्टेशन पर, क्योंकि ये फिल्म मेला का एक नगमा है इतनी खतिन अख्तन फिर तक ना तुन वास एक नौनी खबर और एन यार दाना उक नौक नीत en 10 jaar daarna ook nog steeds niet. Sterker nog, 20 jaar erna ook nog niet. Dil ki awaaz hai ye mere pyare sunne walo. Aaj Mukesh ji ke 50va punyatithi hai aur उनकी याद में आज ये दिल की आवाज़ हम बना रहे हैं, सजा रहे हैं, उनकी नगमाओं के साथ आपका दिल हम बहला रहे हैं। लेकिन गाने इतने सारे हैं कि मैं क्या कहूँ, क्या निकालूँ इस प्लेलिस्ट में, सभी खूबसूरत है, सभी दर्द भरे हैं, प्यार भरे हैं। तो मैं एक झलक सिर्फ आपको सुनाता हूँ और इसमें अगर आपका फेवरेट सॉन्ग नहीं है तो माफी चाहता हूं। लेकिन आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रोग्राम में ना सिर्फ दर्द भरे नगमाएं, प्यार भरे भी है। जैसे कि ये कि झूम झूम के नाचो तुम आज, गाओ खुशी का गीत हो, फ्रॉम द मूवी अंदाज। और अंदाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ये नोक ओवर वांटेड इज फनी है दी 1949 मुकेश जी, और ये खूबसूरत गीत आप तक गाकर पेश करेंगे।

कोई किसी की आंख का तारा और ये जीवन साथी साजन भी प्यारा प्यारा, और कोई तकदीर का मारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा, लेकिन फिर भी झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है और आज किसी की जीत। द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी का ये नगमा बजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ सेवा में हमने पेश किया है। अब की बार इंदवर का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे सुन वालों पेश करने जा रहा हूं। एक नगमा प्यार भरा रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मल्हार। ये भी पुराने नगमा है मेरे प्यारे सुन वालों, 1951 का मूवी मल्हार, संगीत की देवी लता जी, द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी, इंदवर साहब जी का लिखा हुआ गीत कि बड़े अरमानों से रखा है सनम या बलम तेरी कसम।

बड़े अरमानों से रखा है भलम तेरी किस्म, प्यार किए दुनिया में ये पहला कदम। खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग इंदौर का लिखा हुआ, संगीत की देवी लता जी और मुकेश जी की आवाजें। प्रभा जी और तामसनाम सेंद्रम दांकेवाल आपके अब के लिए। मार्सब्रुक का चित्रा जी और हेर एंद्रू जी दांकेवाल आपके अब के लिए। ऐप के लिए भी धन्यवाद हम कहेंगे रोहिणी कल्लू जी, रोहिणी कल्लू जी एत रतनाम दांकेवाल आपके ऐप के लिए। और आमस्टल फेन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। ऐप के लिए भी धन्यवाद हम कहेंगे इल्स रामदयाल जी को, आयुत देनहेल्डर दंकीवेल, धन्यवाद इल्स जी। आईफी जहांगीर आयुत आमसनाम सिंद्रम, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट का आपका और ऐप करने के लिए। एन अतुलक बेटी जी आयुत ख्रोनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। सबिता जी आमस्टरडम ऑस्टरप से भी आप सुन रहे हैं, चुन किए हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सबिता जी एट ऑस्टरप आमस्टरडम। कारिन सदल भी प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, कारिन सदल शुक्रिया डंकीवेल आपके ऐप के लिए। अलमेर का सीता डंकीवेल सीता, खनीत वन मोए सॉन्ग्स, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और माइस भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, माइस एंजॉय एंजॉय और दंकीवेल फॉर ये अपियर। ये है मुकेश मेरे प्यारे सुनने वालों, मुकेश जी एंड लता।

दर्दली का वो चांद तो अपना है, या कहिए बदली का वो चांद एहलक सबका है, लेकिन ये घूंघट का ये चांद तो अपना है। और क्या कहते हैं वो प्रेमिका कि मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है। इतनी प्यार इस गीत में मेरे प्यारे सुनने वालों जी ने कृष्ण जी के कलम से लिखा हुआ। फिल्म का नाम बरखा, और बरखा जो है मूवी मेरे प्यारे सुनने वालों 1959। आज ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल बनाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल की आवाज। आज मुकेश जी के 50वां पुण्यतिथि है, और कारण ये कि मैंने आज का ये प्रोग्राम पूरा का पूरा मुकेश जी के नगमाओं के साथ, हमने आपका दिल बहलाए हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी को बेहद भी पसंद आए हुए होंगे। और किसी ने कहा कि या अति सोखरोत आर्टिस्ट दत मुतो ईफ ब्लाइव हेयर देंक, लेकिन मैं क्या करूं मेरे प्यारे सुनने वालों, एक मूत अन वक्त क्या एक प्लानिंग क्या एक एंड प्लानिंग के मुताबिक हम प्रोग्राम बनाते हैं। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सुनने वालों। हम बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर, जो इस घंटे का आखिरी होंगे। फिल्म का नाम हर याली और रास्ता, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ। मुकेश जी और लता जी मिलकर गीत गाएंगे, और मेरे प्यारे सुनने वालों रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल। बाय।

0: मैंने जो कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा।
1: भाई मैं जो कहती हूँ लड़की होगी।
0: ओहो भाभी अब तुम्हें समझौता कर दो, अगर जुड़वा बच्चे हो जाए तो।